0: हुआ है कि हमारे सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगन की अपील पर लाखों मुहिब्बे वतन शहरी सड़कों और चौराहों पर निकल आए और अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपने वतन, अपने परचम और अपनी जमहूरियत का दिफा करने के लिए मिली तारीख की अजीम तरीन अवामी मसाहमतों में से एक की मिसाल कायम की। आज तुर्की एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुस्तहकम रियासत और महकूम सोच से आज़ाद जमहूरियत के तौर पर तुर्की सदी के हदफ की जानब पूरे एतमाद कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है और हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक मुस्तकबिल की तामीर के अज़्म पर कायम है। पैगाम के आखिर में यिलमाज ने कहा है कि इस दिन के 10वीं सालाना याद के मौका पर मैं अपने अजीम शहदा को दुआए रहमतो मगफरत और जज्बात अकीदत व एहतराम के साथ याद करता और अपने बहादुर गाजियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अमरीका ईरान तनाज़ा फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। अमरीका की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाए जाने के बाद अमरीका ईरान तनाज़ा फिर से शिद्दत इख्तियार कर गया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर तेहरान मुज़ाकरात की तरफ वापस न आया तो वो ईरानी पावर प्लांटों और पुलों पर हमला कर देंगे। नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार किया है कि नए हमले का बहुत मजबूत जवाब दिया जाएगा, लिहाजा वो साबका चीज़ों की तकरार की तवक्को न रखे। दरअसल इस तनाज़े के पूरे खत्ते में फैलने के साथ ईरान ने उर्दन में अमरीकी अड्डों पर सातवें ड्रोन हमले का ऐलान किया है। अमरीका 30 सितंबर को इराक में अपनी फौजी मौजूदगी खत्म कर देगा। अमरीकी फौज इराक में 2003 के हमले से शुरू होने वाली 23 साल मौजूदगी खत्म कर रही है। इसके मुताबिक अमरीकी फौजी सितंबर के आखिर तक इराक से निकल जाएंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम नहीं समझते कि हमें अब वहां फौजी मौजूदगी की जरूरत है। इराक के वजीर आजम अली अल ज़ैदी ने कहा है कि अमरीकी अफवाज 30 सितंबर तक इराक से निकल जाएंगी। ये इनखला 2024 के एक मुआहदे का नतीजा है जो इराकी अफवाज की बतदरीज सिक्योरिटी जिम्मेदारियां संभालने के बाद दाश के खिलाफ अमरीकी जेर क्यादत मिशन को खत्म करने पर मबनी था।
1: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
0: अमरीकी सेनेट में होने वाली रायशुमारी में 1.15 ट्रिलियन डॉलर के सालाना नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA के अगले मरहले की हमायत में मतलूबा वोट हासिल नहीं हो सके। बिल 60 दरकार वोटों की जगह 50 के मुकाबले में 46 वोटों से मुस्तरद हो गया है। रायशुमारी ज्यादातर जमाती खतूत के मुताबिक हुई। सेनेट में अक्सरियती रहनुमा जान थोन ने बाद में इस तजवीज़ को दोबारा पेश करने का इख्तियार बरकरार रखने के लिए अपना वोट हाँ से तब्दील करके नहीं कर दिया। 4 सेनेटरों ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया, जान फेटरमैन, जिम जस्टिस, मैच मैकोनल और एलेक्स पेडेला। NDAA को गुज़श्ता माह सेनेट की आर्मर्ड सर्विस कमेटी ने 2 जमाती हमात के साथ 18 के मुकाबले में 9 वोटों से मंजूर किया था। ताहम हालिया हफ्तों में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अराकीन के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सेनेटर दिफाई और गैर दिफाई अखराजात की हद से मुतलिक इख्तलाफात दूर नहीं कर सके, जिसके बायस बिल सेनेट के मुकम्मल इजलास से अगले मरहले तक नहीं पहुंच सका। डेमोक्रेट अराकीन ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ दोबारा शुरू होने वाली अमरीकी फौजी कार्रवाइयां इस बिल की मुखालफत की एक अहम वजह हैं। उन्होंने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए फौजी ऑपरेशन के लिए कांग्रेस से पेश की मंजूरी न लेने पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि इंतजामिया ने हमलों का आगाज करते वक्त कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने का आइनी मरहला नजरअंदाज किया है। इस नाकाम रायशुमारी के बाद सालाना दिफाई इख्तियारात से मुतलिक बिल सेनेट में तातुर का शिकार हो गया है। तवक्को है कि रिपब्लिकन की आदत आइंदा किसी मरहले पर इस बिल को दोबारा सिरे गौर लाएगी। इसराइल ने दावा किया है कि वह लुबनान से अपनी फौजों को जुज़्वी तौर पर वापस बुलाने के लिए तैयार है। इसराइली और लुबनानी हुकाम ने अमरीका की ज़ेर सालसी रूम में एक नई मुलाकात की है। इस मुलाकात में इसराइल ने ऐलान किया है कि वह लुबनान के जनूबी इलाके में मौजूद 2 मकामात से अपने फौज के इनखला के मनसूबे पर अमल दरामद के लिए तैयार है। इसराइल के वजीर खारजा गिडियोन सार ने कहा है कि इसराइल इन 2 पायलट इलाकों में इस मनसूबे को नाफज करने के लिए तैयार है, जबकि लुबनान ने मजीद मुज़ाकरात से पहले फौरी तौर पर इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला का लेबा किया है। ये मुज़ाकरात एक फ्रेमवर्क मुआहदे के बाद मुनक्कद हुए, जिसका मकसद दोनों फरीकों के दरमियान जंग का खात्मा करना और लुबनान की फौज को मुल्क के जनूबी हिस्से पर दोबारा कंट्रोल कायम करने का मौका फराहम करना है। मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मुल्क में मौजूद किसी भी इसराइली शहरी को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। मुल्क के जनूबी सूबे जोहोर में एक निसरगर्मियों में एक इसराइली शहरी के मौजूदगी के दावों के बाद वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने आज परोसपुत जारी करदा बयान में कहा है कि मुतल्लिका इदारे इन इल्जाम की तहकीकात कर रहे हैं और अगर ये इल्जाम दुरुस्त साबित हुए तो हुकूमत किसी किस्म की नरमी नहीं

बरतेगी। उन्होंने कहा है कि अगर हमें किसी इसराइली शहरी का सुराग मिलता है तो हम इसे फौरी तौर पर मुल्क बदर कर देंगे, क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। मलाशिया वजारत दाखिला ने जोहोर की रियासती हुकूमत की तरफ से जोहोर में कायम कारोबारी बरादरी नेटवर्क स्कूल से मुतलिक इल्जाम पर वफाकी तहकीकात का मुतालबा किए जाने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। दूसरी जानब मुल्क के महकमा इमीग्रेशन ने कहा है कि फॉरेस्ट सिटी में एक बैन अवी कम्यूनिटी के हवाले से किए गए मुआयने के दौरान तमाम 266 गैर मुल्की शहरियों के पास दुरुस्त इमिग्रेशन दस्तावेजात मौजूद थी। यूटा में एक मुसलमान मजदूर को चाकू मारने वाले एक शख्स ने के खिलाफ नफरत अंगेज जुर्म के इल्जाम में दावा दायर कर दिया गया है। यूटा में एक मुसलमान शख्स को बार बार चाकू मारने और पुलिस के सामने इस शख्स को इसके मसबी अकायद की वजह से निशाना बनाने का एतराफ करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजम आवाम के लिए एक संगीन खतरा है और इसने अफसरान को बताया है कि वो मुसलमानों को कत्ल करने का इरादा रखता है। मुतासर शख्स की हालत तशवीशनाक है। यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब इंसानी हकूक के अलमबरदार अमरीका में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया से खबरदार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीस ने कहा है कि हम डेटा सेंटरों की बिजली और पानी के इस्तेमाल को मुनज़म करने के लिए मसनूई जहानत के नए कवानीन मुतारफ करवाएंगे। अलावा से तख्लीकी फनपारों के लिए कापीराइट के तहफ़ को भी मजीद मजबूत किया जाएगा। मसनूई जहानत से मुतलिक अपने हुकूमती हिकमत अमली पर अहम खिताब में वजीर आजम एंथनी अल्बनीस ने मसनूई जहानत के हवाले से अवामी खदशात को दूर करने की कोशिश की और कहा है कि AI टेक्नोलॉजी को इस अंदाज में फरोग दिया जा सकता है जो ऑस्ट्रेलिया के कौमी मफादात की खिदमत करे। अल्बनीस ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदियां आयद करने के हवाले से दुनिया की क्यादत कर रहा है, लेकिन मसनूई जहानत की तरक्की की सिमत का तयन करना इससे कहीं बड़ा चैलेंज है जिसके लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। सिडनी यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर हम पीछे हट गए और अपनी जगह पर जमे रहे तो ये तब्दीली हमें मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ देगी। हमारा अजीम मुल्क सिर्फ बैरून मुल्क तैयार की जाने वाली मसनूई जहानत की मसनूआत के लिए डेटा का जखीरा बनने से कहीं बढ़कर किरदार अदा कर सकता है। डेटा सेंटरों के बारे में अल्बनीस ने कहा है कि इस अमल को दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ाने से ज्यादा वजाहत और तेजी आएगी। कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तरीकाकार आसान होगा और इसे बैन अल-अक़वामी सरमायाकारों के लिए हमारी कशिश में इजाफा होगा। कॉपीराइट के बारे में उन्होंने कहा है कि कोई भी कंपनी किसी फनकार की इजाज़त के बगैर ऑस्ट्रेलिया की किताबों मौसीकी फनपारों या खबरों को मसनूई जहानत की तैयारी या तरतीब के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे कम कोई भी हमारा अमल दरअसल चोरी है। मसनूई जहानत को माशी मौका करार देते हुए उन्होंने कहा है कि हमें मसनूई जहानत को अच्छे रोजगार के लिए खतरा नहीं समझना चाहिए बल्कि इसे बेहतर मुलाजमतें पैदा करने के लिए एक मौसर जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुईं।

15 जुलाई अजीज सामीन, आज 15 जुलाई 2026 है। 10 साल कबल 15 जुलाई 2016 को तुर्की को एक गद्दाराना इकदाम बगावत का सामना हुआ। फेतो नामी दहशतगर्द तंजीम ने तुर्क मुसलह अफवाज में घुसाए हुए एजेंटों को इस्तेमाल करके हमारे मुल्क और मुल्क की नुमाइंदा काबिल कदर अकदार पर हमले की कोशिश की। सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स और तुर्की कौमी असम्बली पर बमबारी की गई और टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन कारपोरेशन समेत मुतद्दद सरकारी इदारों को तहवील में लेने की कोशिश की गई। अंकरा और इस्तंबुल की फजाओं को जंगी तैयारों से और शाहराहों को टैंकों से धमकाया गया, लेकिन हमारे इस सूरत हाल से ला ताल्लुक नहीं रहे। सदर रजब तैयब एर्दोगान की अपील पर हजारों शहरी बगावत की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए शहर की सड़कों और चौराहों पर निकल आए। शहरी अपनी जानों की परवाह किए बगैर टैंकों के सामने और हेलीकॉप्टरों से की जाने वाली फायरिंग के सामने सीना सपर हो गए और एक ऐसी मुजाहमत के साथ वतन, हुकूमत और जमहूरियत का दिफा किया जिसकी नसीब नहीं मिलती। इसी अवामी अज़्म की मदद से हुकूमत ने अकदाम बगावत पर कामयाबी से काबू पा लिया। इस तहफ़ वतन की राह में 253 शहरी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। 15 जुलाई का दिन फतेह जमहूरियत की अलामत बन गया और इस दिन को यौम जमहूरियत और मिल्ली इत्तेहाद ऐलान किया गया। आज हम अपने 15 जुलाई के शहदा और गाजियों को जज्बात एहसान मंदी और शुक्रगुजारी के साथ याद कर रहे हैं। लीजिए सामिन, अब एक गीत समाप्त फरमाइए। गीत के बोल हैं पीर आशिक कायसी और गाया है हाकान कायाहान ने।

आज से ठीक 10 साल पहले कैलेंडर पर 15 जुलाई 2016 की तारीख थी। तुर्की ने अपनी तारीख की तारीख तरीन रातों में से एक का सामना किया। फेतों के दहशतगर्दों ने कौम का ही असलहा कौम के खिलाफ तान लिया, लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसका उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया था, तुर्क कौम का गैर मुतजलजल अज़्म। अब हम उस तारीखी रात की तारीख पर घंटा ब घंटा, मिनट पर मिनट दोबारा नजर डाल रहे हैं। मालूमात, दस्तावेजात और कभी ना भूलने वाली बहादुरी की दास्तानों के साथ। जुमे के रोज जब घड़ी ने रात के 9:30 बजाए तो दारुल हुकूमत अंकारा में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर से गोलियों की आवाजें गूंजी। अवाम जो यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, उसने आसमान की तरफ देखा। बागियों के कब्जे में मौजूद 16 तैयारों ने लोगों को खौफजदा करने के लिए अंकारा की फिजाओं पर निचली परवाजें शुरू कर दी थी। यह खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। जैसे ही बगावत की कोशिश का पता चला, अंकारा के नडर शहरी जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर के सामने जमा होना शुरू हो गए। लेकिन दहशतगर्द बेरहम थे। फेदों के कातलों के जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर से जमहूरियत के लिए सड़कों पर निकलने वाले मासूम लोगों पर गोलियों की बारिश कर दी गई। आने वाले घंटों में जनरल स्टाफ के सरबराह खुलूस याका और आला दर्जे के कमांडरों को बागी एक हेलीकॉप्टर के जरिए किसी नामालूम मकाम पर ले गए। इसी लम्हे सबकी नजरें इस्तांबुल पर टिक गईं। ना सिर्फ अंकारा बल्कि इस्तांबुल भी निशाने पर था। मुल्क को अफरा तफरी में धकेलने के ख्वाहिशमंद फेतों के दहशतगर्दों ने टैंकों के जरिए बास्फोरस बुल और फातिह सुल्तान मोहम्मद पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। रियासत ने इस बगावत के खिलाफ अपना सरकारी बयान देने में देर नहीं की। रात 11:02 पर वजीर आजम बिन अली यिल्दिरिम कैमरों के सामने मौजूद थे। दर हकीकत हम एक बगावत का सामना कर रहे हैं। चेन ऑफ कमांड के बगैर फौज के अंदर कुछ अफराद की जानिब से एक गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। इस बयान के ठीक चंद मिनट बाद रात 11:18 पर बागियों ने पहला बम अंकारा के जिला गोलबाशी पर गिराया। पुलिस एविएशन डिपार्टमेंट पर बुजदिलाना हमला किया गया। 16 जुलाई के इब्तदाई मिनटों में अगला निशाना मुल्की इंटेलिजेंस का दिल था। हेलीकॉप्टरों ने येनी मोहल्ले में वाकई MIT नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की इमारत पर फायरिंग कर दी, लेकिन इंटेलिजेंस एहलकारों ने हथियार नहीं डाले बल्कि अपने पास मौजूद असलहे से हेलीकॉप्टर पर फौरी जवाबी फायरिंग। इसी दौरान वर्दी पोश दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरकारी TV TRT की राहदारियों में दाखिल हो चुका था। वो कौम की स्क्रीन को खामोश करना चाहते थे। उन्होंने TRT के मुलाजमीन को यरगमाल बनाया और इदारे के आमदोरफ्त के रास्ते बंद कर दिए। सदर रजब तैयब एर्दोगान उस वक्त अपने खानदान के साथ मारमरिस में थे। आधी रात के बाद 12:24 पर वो फोन के जरिए बराह रास्त वीडियो कॉल पर TV चैनल से मुंसलिक हुए। उनकी इस तारीखी पुकार ने रात का पूरा रुख बदल कर रख दिया। सदर ने आवाम से इन अल्फाज में खिताब किया, मैं अपने आवाम को अपने शहरों के चौकों और हवाई अड्डों पर जमा होने की दावत देता हूँ। हम बतौर कौम चौकों और हवाई अड्डों पर इकट्ठे होंगे और इस अकलियती ग्रुप को अपने टैंकों के साथ आने दें। वो अवाम के सामने जो करना चाहते हैं करें, मैंने आज तक अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं देखी। इस आवाज़ के साथ ही लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। रात 12:56 पर अंकारा पुलिस हेडक्वार्टर्स पर बमबारी की गई। रियासत के तमाम हिफाजती इदारों और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को निशाना बनाया जा रहा था। अंकारा के गोलबाशी में वाकई टर्कसैट की इमारत भी उस तारीख रात में बमों का निशाना बनने वाला एक और अहम मरकज थी। और रात के 2:18 पर उस बगावत की कोशिश और मुल्क की तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ आया। स्पेशल फोर्सेस कमांड में ड्यूटी पर मौजूद सीनियर सार्जेंट मेजर उमर खालिद देमिर ने उस हुक्म को कबूल किया जिसका अंजाम शहादत था।